आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

ऐसा सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुए, हजार रातों में वह भी एक रात हुए, आंख उठा के देखे जब वह मेरे को नहीं, वह एक पल भी पूरी कायनात हुए, वह एक पल भी पूरी कायनात हुए।

जैसे मैं खेल रहा लुका छुपी और छुप गया मार्स पे और मुझे कोई देख नहीं रहा। ये चोरी किया मैंने रानी हार को बनके मिस्टर इंडिया और मुझे कोई देख नहीं रहा। टेंशन सारी छोड़ दी ओए, आज कमी ना हो शोर की ओए, हाँ मुझे डांस आया आया बड़ी जोर से आज।

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: कभी हीर तो कभी रांझा बेवफा हुआ था, मैंने ये बस कहानियों में सुना हुआ था। तेरे बाद ये धड़कता हुआ पुर्जा वहां भी ना लगा जहां लगा हुआ था। उतने ही करीब आ गई थी मौत जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था, जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था।
1: SBS South Asian

लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूट लग रही हो, वैसे सिंगल हूँ, दिल का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो।

अखा ना जरा भी अखा हो तेनू देख के बदल गई तोर जी नी चढ़ी जाती लोर लोर लोर लोर जी नी चढ़ी जाती लोर लोर लोर लोर जी पहला लंघ दी दिहाड़ी।

0: Your news from here and hits from home.
1: SBS South Asian.
2: जो हमसे वफा ढूंढ रहे थे वो खुद ही बेवफा हो गए. हमने सच का आईना क्या दिखाया, वो खफा हो गए, वो खफा हो गए.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS हिंदी के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. ये है 3 मई 2026 की एक ढलती हुई शाम और आप सभी को वृषाली जैन का प्यार भरा नमस्कार. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे. आज का SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरा गिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर यह कार्यक्रम आज सुना जा रहा है. दोस्तों, आज आपके साथ खेलते हैं एक छोटी सी अंताक्षरी. आज आप मुझे बताइए कि याद शब्द से कौन से ऐसे गीत हैं जो आपको बड़े पसंद हैं और आज गीतों की रेलगाड़ी चलाएंगे इन्हीं गीतों के साथ. संदेश भेजिए मुझे 04397997667 पर. लेकिन कार्यक्रम में आज सबसे पहले सुनेंगे संक्षिप्त समाचार, फिर चर्चा होगी ऑस्ट्रेलिया में इंडिजिनस आर्ट को खरीदने के सही तरीके पर. इसके बाद सुनेंगे सप्ताह भर की देश विदेश की बड़ी खबरों का एक न्यूज रैप और फिर लेके आऊंगी फिल्मी डायरी में किस्से अरिजीत सिंह के. अंत में चलाएंगे गीतों की रेलगाड़ी आपकी पसंद से, क्योंकि आज मैं और आप खेल रहे हैं एक गीतों की अंताक्षरी जिसमें आपको मुझे बताना है याद शब्द से कौन से गीत आपको पसंद है. 04397997667. ऐसा जरूरी नहीं है कि गाना याद शब्द से शुरू हो, वो गाने में याद शब्द आना चाहिए. लाइक पहले 3-4 लाइनों में याद शब्द आना चाहिए. मुश्किल गेम नहीं खेलते हम लोग. तो 04397997667 हमारा नंबर है, जल्दी जल्दी संदेश भेजिए. तब तक मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ संक्षिप्त समाचार. पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ. सिडनी के दक्षिण पश्चिमी इलाके रोजमिडो में एक घर में हुई हिंसक घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है. इमरजेंसी सेवाओं को मौके पर एक पुरुष और एक महिला के शव मिले, जबकि एक अन्य पुरुष ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया. मरने वालों में 64 वर्षीय एक पुरुष, 61 वर्षीय एक महिला और 37 वर्षीय एक पुरुष शामिल हैं. वहीं एक 30 वर्षीय पुरुष गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस का मानना है कि ये मामला घरेलू हिंसा से जुड़ा हो सकता है. पुलिस के अनुसार इस घर में कुल 5 लोग रहते थे और एक 32 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. सुपरिटेंडेंट ग्रांट हीली का कहना है कि घटनास्थल पर इमरजेंसी कर्मचारियों को बेहद भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा. अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी हो तो अनुरोध है कि वे क्राइम स्टॉपर्स से ऑनलाइन या 1300-333-000 पर संपर्क करें. आपात स्थिति में 000 यानी 000 पर कॉल करें. चेतावनी, आगे आने वाली खबर संवेदनशील है. अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर श्रोताओं को सलाह दी जाती है कि इस खबर में एक दिवंगत अबोरिजिनल बच्चे का नाम शामिल है. नॉर्दर्न टेरिटरी पुलिस ने एक व्यक्ति पर हत्या का एक और यौन उत्पीड़न के 2 आरोप तय किए हैं. ये मामला एलिस स्प्रिंग्स के पास एक समुदाय से पिछले सप्ताह लापता हुई 5 साल की बच्ची से जुड़ा है. पुलिस ने बताया कि आरोपी हिरासत में है और उस पर कुमनजाय लिटिल

0: बेबी की हत्या का आरोप है। नॉर्दर्न टेरिटरी पुलिस आयुक्त मार्टिन डोल का कहना है कि इस समय बच्ची का परिवार उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। यदि आप या आपका कोई परिचित यौन उत्पीड़न, उत्पीड़न या घरेलू हिंसा के बारे में बात करना चाहता है तो 1800 रिस्पेक्ट हेल्पलाइन को 1800-737-732 पर संपर्क करें। आपात स्थिति में 000 यानी 000 पर कॉल करें। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त अबोरिजिनल सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध 13 यान हेल्पलाइन को 139276 पर संपर्क करें। क्वींसलैंड सरकार ईंधन आपूर्ति मजबूत करने और वैश्विक बाजारों पर निर्भरता कम करने के लिए आपात कदम उठा रही है। सरकार 6 प्रमुख बंदरगाहों पर उपलब्ध अतिरिक्त सरकारी जमीन की पहचान कर रही है जहां नए फ्यूल स्टोरेज और रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स लगाए जा सके। तेल ड्रिलिंग के प्रयासों के साथ साथ सरकार ने एक्सेलरेटिंग फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत सरकारी जमीन और बंदरगाहों पर नए रिफाइनिंग और स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में पूरे राज्य में उपयुक्त स्थलों की पहचान, उद्योग से प्रस्ताव आमंत्रित करना और मंजूरी प्रक्रिया को तेज करना शामिल है। क्वींसलैंड प्रीमियर डेविड क्रिसाफली का कहना है कि राज्य को वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भर रहने से बचने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। वहीं फेरर उपचुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। वन नेशन में शामिल हो चुके बार्नबी जॉयस का कहना है कि उनकी पार्टी को इस सीट पर जीत मिल सकती है जहां मुकाबला क्लाइमेट 200 समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार मिशेल मिलथॉर्प से कड़ा माना जा रहा है। इस सीट पर लिबरल और नेशनल पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं और इसे एंगस टेलर के नेतृत्व की बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, खासकर क्षेत्रीय मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ को लेकर। यह उपचुनाव तब हुआ जब पूर्व लिबरल नेता सूजन ली ने संसद से इस्तीफा दे दिया था। अगर वन नेशन जीतती है तो ये पार्टी की फेडरल चुनाव में पहली जीत हो सकती है। बार्नबी जॉयस फिलहाल निचले सदन के सदस्य हैं। वे पहले नेशनल्स के टिकट पर न्यू इंग्लैंड सीट से जीते थे लेकिन बाद में वन नेशंस में शामिल हो गए थे। उन्होंने संकेत दिया है कि वे इस सीट से फिर चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि पहले उन्होंने न्यू साउथ वेल्स से सेनेट चुनाव लड़ने की बात कही थी। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनका देश ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के बीच बड़ी मात्रा में तेल बेच रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना समुद्री जहाजों को रोककर उनके माल, खासकर तेल को अपने कब्जे में ले रही है और इसे उन्होंने समुद्री डकैती जैसा बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी ऊर्जा कंपनियां ईरान के भीतर काम कर सकती हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन बयानों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के खिलाफ अमेरिका की आपराधिक कार्रवाइयों की सीधी और गंभीर स्वीकारोक्ति बताया है। और अंत में खबरें भारत से। ईरान युद्ध का असर अब भारत की एलपीजी सप्लाई पर साफ दिखने लगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण देश का एलपीजी आयात आधे से भी ज्यादा घट गया है। सरकार के मुताबिक भारत अपनी करीब 60% एलपीजी जरूरत आयात से पूरी करता है, जिसमें से 90% सप्लाई इसी रास्ते से आती थी। स्थिति संभालने के लिए घरेलू उत्पादन में लगभग 30% की बढ़ोतरी की गई है और कमर्शियल गैस का कोटा घटाया गया है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई जारी रखी जा सके। हालांकि मार्च में एलपीजी खपत फरवरी के मुकाबले 16% कम दर्ज की गई है। सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की सप्लाई पर बड़ा असर नहीं पड़ा है, लेकिन एलपीजी की कमी को पूरी तरह से संतुलित करना अभी भी चुनौती बना हुआ है। इसी के साथ 3 मई 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। संक्षिप्त समाचार के बाद आइए चर्चा करते हैं इंडिजिनस आर्ट को खरीदने पर। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ऐसा बहुत कम होता है कि आप इंडिजिनस आर्ट का सामना ना करें, उसके साथ एंगेज ना करें, उसको देखें ना। और कई बार ये इतनी खूबसूरत होती है कि आप इसको खरीदना ही चाहते हैं। तो क्या है इंडिजिनस आर्ट को, यानी इंडिजिनस कलाओं को खरीदने का सही तरीका, इस पर चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के संश में। आइए सुनते हैं। इसके अलावा आज हम एक अंताक्षरी खेल रहे हैं। कौन सी अंताक्षरी है इसके बाद बताऊंगी, लेकिन पहले आइए सुनते हैं ये अंश।
1: आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है।
2: क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिजिनस बताकर बेचे जाने वाले 4 में से 3 स्मृति चिन्ह यानी सुविनिया असली नहीं होते? तो फिर असली और नकली में फर्क कैसे पहचाने और ये क्यों जरूरी है? ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश में हम इंडिजिनस नेताओं और विशेषज्ञों से सुनेंगे कि नकली कला का क्या असर पड़ता है, सही और नैतिक उत्पादों को कैसे पहचाने और उन्हें कहां से खरीदें, ताकि आप ऑस्ट्रेलिया में प्रथम राष्ट्र की कला और हस्तशिल्प को भरोसे के साथ और सही तरह से पा सके। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और आइए सुनते हैं अब इस अंश को। प्रथम राष्ट्र की कला और हस्तशिल्प खरीदना सिर्फ अपने लिए एक खूबसूरत चीज लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर कलाकृतियों और हस्तशिल्प के पीछे 60,000 साल से भी पुरानी सांस्कृतिक परंपरा और ज्ञान छिपा होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है। तो इंडिजिनस कला खरीदने वाले लोगों को इसके बारे में क्या जानना चाहिए? हमने इस बारे में क्वांडामूका समुदाय से जुड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वकील स्टेफनी पार्किन से बात की।
3: Another word for ICIP is cultural heritage, and we refer to cultural heritage as a whole range of different things: traditional knowledge, information, stories, songs, languages that our ancestors created over many generations of living on this country. And yes, ICIP is more than just the physical piece of artwork that you might hang on the wall. ICIP includes all the things that you can't see, the story behind the artwork, all of the things that have influenced the artists to create that work and tell their story in that way.
2: ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने प्रथम राष्ट्र ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए खास कानून लाने का वादा किया है। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि नकली कला, सामान और स्मृति चिन्हों से समुदाय को काफी नुकसान हुआ है। स्टेफनी पार्किन के अनुसार ये फैसला कई सालों की कोशिशों के बाद आया है, ताकि गैर इंडिजिनस लोगों द्वारा बनाए गए नकली उत्पादों की बिक्री को रोका जा सके और ऐसे सामान पर भी रोक लगे जिनमें कंट्री यानी भूमि और संस्कृति से जुड़ी अभिव्यक्तियों का बिना अनुमति इस्तेमाल किया जाता है।
3: When a dealer or an art gallery has gone through the process of membership, and once that membership has been approved by the Indigenous Art Code, they're then provided with logos that can be put on the art dealer's website or the shop front. And then that is for consumers to see that they've committed to ethical practices when dealing with artists.
2: स्टेफनी पार्किन इंडिजिनस आर्ट कोड की चेयर भी हैं। ये एक राष्ट्रीय संस्था है जिसे 2007 में सीनेट जांच के बाद बनाया गया था, ताकि कलाकारों और उनकी कला की सुरक्षा की जा सके। इसके तहत व्यवसायों और आर्ट डीलरों के लिए एक वैकल्पिक आचार संहिता यानी कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी बनाया गया है। स्टेफनी पार्किन बताती हैं कि इंडिजिनस कला खरीदने के कई तरीके हैं। आप सीधे कलाकारों से खरीद सकते हैं, इंडिजिनस आर्ट फेयर से ले सकते हैं, या देश भर में मौजूद 100 से अधिक इंडिजिनस आर्ट सेंटर्स के जरिए भी ये कला खरीदी जा सकती है। इंडिजिनस आर्ट कोड के काले और लाल रंग वाले गोल लोगो को ढूंढना एक तरीका है, जिससे आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप नैतिक रूप से सही यानी एथिकल खरीदारी कर रहे हैं।
3: When a dealer or an art gallery has gone through the process of membership, and once that membership has been approved by the Indigenous Art Code, they're then provided with logos that can be put on the art dealer's website or the shop front. And then that is for consumers to see that they've committed to ethical practices when dealing with artists.
2: Sarita Fielding Wanarua Nation से जुड़ी एक कलाकार, डिजाइनर और व्यवसायी हैं और इंडिजिनस आर्ट कोड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं। उनका कहना है कि प्रथम राष्ट्र की कला खरीदना सिर्फ खरीदारी नहीं है, बल्कि एक नैतिक और सांस्कृतिक यात्रा है और इसके लिए 3 मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
4: People knowing how to ask the right questions, to connect with the right channels and to gauge the authenticity of the work.
2: चाहे आप कोई असली कलाकृति खरीद रहे हों या किसी लाइसेंस वाले डिजाइन से बना उत्पाद, ये जानना जरूरी है कि उसे किसने बनाया है और किन शर्तों पर उसे बेचा जा रहा है।
4: Having that information and being equipped to ask the right questions, I think is really really the first step. And that's something that is available on the Indigenous Art Code's website on how to ask the right questions about the artist's connection to country, or, you know, what is the artwork, the narrative? Is the artist fairly paid, or how does that happen?
2: जिम्मेदार खरीदार होना सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि प्रथम राष्ट्र कलाकारों को उनका सही हक मिले. सरेटा फील्डिंग के अनुसार इससे अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदायों को अपनी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को और बड़े स्तर पर साझा करने में मदद मिलती है.
4: Because often when you purchase off an artist, that's really something that's benefiting their communities as well. Knowing that there can be some misconceptions around Aboriginal artists all being the same, but, you know, we're a very big country and we're diverse and we're across regional, remote, and even living in cities. And, working to bring authentic Aboriginal art to the marketplace.
2: सही और नैतिक तरीके से आर्ट खरीदकर आप सिर्फ एक स्मृति चिन्ह यानी सुविनियर या सुंदर कलाकृति ही नहीं खरीदते, बल्कि उस सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने और उससे जुड़े समुदायों का समर्थन करने में भी योगदान देते हैं. ये एक छोटा सा फैसला है, लेकिन इसके असर लंबे समय तक रहते हैं. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश को SBS न्यूज से ज़ोई थॉमटू और SBS हिंदी से प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने.
1: ये एक SBS ऑडियो पॉडकास्ट था. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के और दूसरे पॉडकास्ट के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाएं.
0: इंडिजिनस कला पर इस अंश के बाद कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का. अंतराल के उस पार सुनेंगे सप्ताह भर की खबरों का एक न्यूज रैप, और इसी के साथ आज रविवार के खास शो में मैं और आप खेल रहे हैं एक अंताक्षरी. भाई अंताक्षरी नए प्रकार की है. इसमें आपको मुझे गीत बताना है जिसमें याद शब्द आता हो, पहली चार लाइनों में याद शब्द आता हो. 04397997667 हमारा नंबर है. आज जो गीत आप बताएंगे उसी से चलेगी गीतों की रेलगाड़ी. तो बताइए मुझे कि याद शब्द से कौन सा गीत है जो आपको बड़ा पसंद है. बताइए मुझे 04397997667 पर भेजिए संदेश, और उन्हीं गीतों से बनाऊंगी आज की गीतों की रेलगाड़ी. जब तक आप मुझे संदेश भेज रहे हैं, एक छोटा सा अंतराल ले रही हूँ. आती हूँ सप्ताह भर की खबरों का रैप लेकर के. कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: SBS Audio. अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
8: यही चाहता था यार. चुनबे हालम.
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
13: Far from the partisan politics.
14: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
15: sbs.com.au/audio.
0: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है रविवार के स्पेशल शो पे, जहां हम करते हैं, मैं और आप यानी वृषाली और आप करते हैं बड़ी सारी बातें. और आज मैंने सोचा था कि आपके साथ एक गेम खेला जाएगा. भाई गानों के मामले में, उनको पहचानने के मामले में आप सबका कोई जवाब ही नहीं है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना चीज़ों को बदला जाए. तो मैंने सोचा आपके साथ खेलते हैं एक अंताक्षरी. आपको मुझे बताना है एक ऐसा गीत जो आपको बहुत पसंद है, जिसकी शुरू की चार लाइनों में याद शब्द आता हो. मेरे पास तो एक पूरा का पूरा खजाना है देखिए भाई आपके पास क्या है, नंबर आप जानते हैं 04397997667। बताइए मुझे कि याद शब्द से ऐसा कौन सा गीत है जो आपको बड़ा पसंद है। और जब तक आप मुझे संदेश भेज रहे हैं, आइए सप्ताह भर के यानी 2 मई तक के सप्ताह में क्या कुछ हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत में, खेल जगत में क्या कुछ बड़ा हुआ, आइए सुनते हैं इस न्यूज रैप में। प्रस्तुत है 2 मई 2026 को खत्म होने वाले सप्ताह का न्यूज रैप। फेडरल बजट के बाद तय होगी ईंधन पर एक्साइज कटौती की मियाद। कुमांजय लिटिल बेबी मामले में एक व्यक्ति हिरासत में। और भारत का महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड हुआ तय। नमस्कार, मैं हूँ वृशाली जैन और अब प्रस्तुत है सप्ताह भर की खबरें विस्तार से। ईंधन कर में की गई कटौती को जारी रखने पर कोई भी फैसला आने वाले फेडरल बजट के बाद लिया जाएगा। इस बीच लेबर सरकार निवेश संपत्तियों और फैमिली ट्रस्ट से जुड़े टैक्स नियमों में बदलाव के संकेत दे रही है। अप्रैल की शुरुआत से लागू 3 महीने की ईंधन एक्साइज शुल्क में कटौती के तहत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 26.3 सेंट प्रति लीटर की कमी आई थी। ये कदम अमेरिका नेतृत्व वाले ईरान युद्ध के कारण बढ़ती कीमतों के जवाब में उठाया गया था। सहायक कोषाध्यक्ष चैनल मुलिनो ने कहा है कि 12 मई को पेश होने वाले बजट के बाद ही इस कटौती को बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि विदेशों में संघर्ष किस दिशा में जाता है और तेल की कीमतें कैसे बदलती हैं। वहीं कोषाध्यक्ष जिम चामस से उम्मीद है कि वे बजट में कैपिटल गेन टैक्स छूट और नेगेटिव गियरिंग में बदलाव कर सकते हैं ताकि पीढ़ियों के बीच आर्थिक संतुलन और बढ़ती राजनीतिक चुनौतियों से निपटा जा सके। इस बीच दूरदराज इलाके के कस्बे से लापता हुई 5 साल की बच्ची की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बच्ची की मृत्यु के बाद भड़की हिंसा की भी कड़ी निंदा की है। 47 वर्षीय जेफरसन लुइस पर कुमांजय लिटिल बेबी की हत्या का आरोप है। परिवार की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार बच्ची की मृत्यु के बाद यही नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बच्ची एलिस स्प्रिंग्स के पास एक अबोरिजिनल टाउन कैंप में स्थित घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 5 दिनों तक बड़े पैमाने पर उसकी और आरोपी की तलाश की थी। बताया जा रहा है कि 47 वर्षीय आरोपी बच्ची के लापता होने से सिर्फ 6 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। गुरुवार को बच्ची का शव झाड़ियों के पास मिला था, जिसके बाद पूरे समुदाय में गहरा दुख और गुस्सा फैल गया था। उसी दिन बाद में लुइस को एलिस स्प्रिंग्स के एक टाउन कैंप में गिरफ्तार किया गया, जहाँ स्थानीय लोगों ने उसे पीट कर बेहोश कर दिया था। दूसरी ओर विपक्ष के वरिष्ठ नेता जॉनथन डूनियम का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फेडरल सरकार को और कदम उठाने चाहिए। ये बयान यहूदी विरोधी और सामाजिक एकजुटता पर बनी रॉयल कमीशन की अंतरिम रिपोर्ट जारी होने के बाद आया था। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने कहा है कि फेडरल सरकार इससे जुड़ी सभी सिफारिशों को लागू करेगी। डूनियम ने रिपोर्ट की सिफारिशों का समर्थन किया, लेकिन सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने विपक्ष को सही तरीके से जानकारी नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष आतंकवाद रोधी उपायों पर और सख्त कार्यवाही देखना चाहता है। वहीं फेडरल कोषाध्यक्ष जिम चामस का कहना है कि मध्य पूर्व संघर्ष के महंगाई पर बड़े असर के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन के खतरे में नहीं है। स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को कहते हैं जब महंगाई ऊंची हो और साथ ही आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ गई हो। ताज़ा मासिक आंकड़ों के अनुसार महंगाई दर बढ़कर 4.6% हो गई है, जो पहले 3.7% थी। इसका बड़ा कारण ईरान से जुड़े संघर्ष के चलते पेट्रोल की कीमतों में 33% की बढ़ोतरी है। डॉक्टर चामस का कहना है कि देश में कम बेरोजगारी दर जैसी कई सकारात्मक बातें स्थिति को संतुलित करने में मदद कर रही हैं। उनका कहना रहा कि महंगाई में बढ़ोतरी और आर्थिक वृद्धि के अनुमान में कुछ गिरावट की उम्मीद तो है, लेकिन मजबूत श्रम बाजार और अन्य सकारात्मक कारकों के कारण मौजूदा स्थिति को स्टैगफ्लेशन नहीं कहा जा सकता। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ईरान ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज रानी फिर से शुरू करने की बात है और ईरान पर अमेरिकी नाकेबंदी को खत्म करने की प्रस्ताव दिए गए हैं। ये भी प्रस्ताव दिया गया कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बाद में की जा सकती है। ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखने दिया जाएगा और उन्होंने शुक्रवार को कहा कि वे बातचीत के लिए ईरान के ताजा प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स अपना रुख बदलता है तो तेहरान कूटनीति के लिए तैयार है। ट्रंप ने यह भी कहा कि मानवीय आधार पर वे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही को प्राथमिकता नहीं देंगे। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं से यह भी कहा कि संघर्ष को कानूनी समय सीमा से आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उनकी अनुमति की जरूरत नहीं है क्योंकि युद्ध विराम के बाद शत्रुता तो पहले ही समाप्त हो चुकी है। वहीं अमेरिका में डेमोक्रेटिक सेनेटरों ने रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट पर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की प्रगति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की एक तीखी सुनवाई के दौरान हेक्सेट ने नागरिक हताहतों की संख्या 35 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग 25 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की युद्ध लागत और इस संघर्ष से जुड़े संभावित इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों पर सवालों के जवाब दिए। रोड आइलैंड के डेमोक्रेटिक सेनेटर जैक रीड ने हेक्सेट पर खतरनाक तरीके से स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताने का आरोप लगाया है। और अब खबरें भारत से। सबसे पहले बात भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ शून्य टैरिफ व्यापार समझौते का प्रस्ताव रखा है। इस कदम का उद्देश्य हालिया सैन्य तनावों के बाद क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता लाना है। दूसरी ओर नए आंकड़ों के अनुसार भारत जापान के साथ अंतर कम करते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में तेजी और मजबूत सर्विस सेक्टर इसके प्रमुख कारण है। वहीं आंतरिक सुरक्षा स्तर पर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में IED विस्फोट में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 3 जवानों की मृत्यु हो गई है। यह धमाका ग्रामीणों के लिए रास्ते सुरक्षित करने हेतु चल रहे डीमाइनिंग अभियान के दौरान हुआ। भारत में इस समय चुनावी बयार भी तेज है। वेस्ट बंगाल में 3 मई को विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राजनीतिक दल अब स्ट्रांग रूम की निगरानी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। शुरुआती एग्जिट पोल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर का संकेत मिला है। घरेलू स्तर पर कुकिंग गैस की कीमतें एक स्थायी मुद्दा बनी हुई है। 1 मई से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम भारतीय रुपयों से 25 रुपए बढ़ा दिए हैं। इसका असर होटल और केटरिंग सेक्टर पर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सब्सिडी दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक नए उपाय को लागू किया है जिनमें म्यूल अकाउंट ट्रैकिंग सिस्टम शामिल है। यह कदम ऐसे समय आया है जब पिछले वित्त वर्ष में डिजिटल घोटालों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई थी। और अंत में खबरें खेल जगत से। सबसे पहले बात महिला क्रिकेट की। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में 2026 महिला T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। राधा यादव को शामिल किए जाने से स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों में भारत की गेंदबाजी और मजबूत होने की उम्मीद है। वहीं IPL 2026 में विराट कोहली ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान 800 बाउंड्री का आंकड़ा पार कर लिया। उनकी लगातार शानदार फॉर्म की बदौलत उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ की दौड़ में अब भी बनी हुई है। इसी के साथ 2 मई 2026 को समाप्त होने वाले सप्ताह का न्यूज रैप यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, मेरे पास आपके संदेश आने शुरू हो गए हैं। भाई, मेरे बहुत सारे श्रोतागण जुड़ गए हैं आज की अंताक्षरी में। पहला गाना शिखा शाह ने पॉइंट कुक से भेजा है, जो कह रही हैं, याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम्हारे, वाह बप्पी दा को याद कर रही हैं। और बंधु, आपने नाम नहीं लिखा है लेकिन उन्होंने गाना भेजा है, यादें याद आती हैं। प्यारा गीत है। इसके अलावा मेरे पास फिर से आपने नाम नहीं लिखा है बंधु, लेकिन आपने लिखा है यादों की बारात और याद आ रहा है तेरा प्यार। मतलब आज बप्पी दा को तो हम सुनेंगे ही, दो तीन लोगों ने वो गाना बता दिया है। और राजेंद्र वोरा जी भेज रहे हैं, वृषाली जी नमस्कार, नमस्कार जी। और वो कह रहे हैं कि याद आए आधी रात को उस रात के तौबा, दिल पूछता है हमसे किस बात की तौबा। फिर वो कहते हैं यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। और तीसरा गाना है दिल ने फिर याद किया वक्त की लहर आई है। और इसके अलावा फिर से मेरे पास एक गाना आया है, लेकिन आपने अपना नाम नहीं लिखा है, जो कह रहे हैं यादें याद आती हैं बातें भूल जाती हैं। एक गाना मैं भी इस कड़ी में जोड़ दूं अगर अपनी तरफ से, कि याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। और चर्चा क्या जा रही है भाई, आज हम अंताक्षरी खेल रहे हैं, जहाँ देखिए इतने सारे लोग शामिल हो चुके हैं जो बता रहे हैं कि याद शब्द से उन्हें कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है। भाई याद आती है ना किसी की, या फिर याद आने की एक परिस्थिति बन जाती है, तो फिर गीतों का सहारा लेना पड़ता है। गीत ही तो है, संगीत ही है जो आपको हर किसी परिस्थिति में शांति ला के दे सकता है, मैं आपको सच बता रही हूँ। खैर आगे बढ़ रहे हैं, आज खेल रहे हैं मैं और मेरे लिसनर्स, मेरे श्रोतागण एक अंताक्षरी। वृषाली ने आज आपसे पूछा है कि याद शब्द से कौन सा एक ऐसा गीत है जो आपको बड़ा पसंद है। 04397997767 हमारा नंबर है। बहुत सारे लोग पहले ही शामिल हो चुके हैं, आप भी शामिल हो जाइए। एक छोटा सा अंतराल ले रही हूँ जिसके बाद करेंगे चर्चा अरिजीत सिंह की, जिनका पूरा रेपर्टुआर ही यादों से भरा हुआ है। तो बस एक छोटा सा अंतराल, 04397997767 पे आप भेजते रहिए अपने संदेश, खेलते रहिए मेरे साथ ही अंताक्षरी। मैं बस यूं गई और यूं आई, आपके संदेशों के इंतजार में हूँ। फिर लेकर के आऊँगी अरिजीत सिंह के जीवन की सुने अनसुने किस्सों की एक श्रृंखला। आइए सुनते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
8: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
9: One more, let's go.
8: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
15: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
16: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
17: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
16: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
18: The success you've had in life matters. The late nights, the extra shifts, the moments you've stood up and said, I've got this. At University of Maryland Global Campus, we value your achievements because we're a school for real life. With UMGC, you can earn up to 90 credits toward a bachelor's for prior learning and relevant life and work experience, or transfer up to 12 credits toward a master's. We offer scholarships, affordable tuition, and online and hybrid classes, all with the support you need from your first day to graduation day and beyond. As an accredited state university, we've been transforming lives for over 75 years. Choose from more than 135 undergraduate and graduate degrees and certificates, and get ready to succeed again. At UMGC, success is yours for the taking and the making, and nothing should keep you from it, especially not an application fee. Apply now and we'll waive your application fee. Classes start May 13th. Learn more at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by CHEV.
19: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए, ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर, हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
0: और ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में. आप सुन रहे हैं वृषाली जैन को और चर्चा जारी है SBS हिंदी पर. आज हमारी याद शब्द से गीतों की. आपको मुझे बताना है कि याद शब्द से कैसा कौन सा गीत है जो आपको बहुत पसंद है. 04397997667 हमारा नंबर है. जब तक आप मुझे भेज रहे हैं संदेश, आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह के जीवन से जुड़े सुने अनसुने किस्से आज की फिल्मी डायरी में.
9: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम फिल्मी डायरी में आपका स्वागत है. मैं हूं कात्यायनी. बॉलीवुड के जिस कलाकार की आज हम बात करने जा रहे हैं वो एक प्रसिद्ध गायक व संगीतकार हैं. इनके गाने पूरी दुनिया भर में सुने जाते हैं. वो म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले सिंगर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. ये हिंदी के अलावा मराठी, तमिल, उड़िया, बंगाली, तेलुगु, असमी, गुजराती और कन्नड़ भाषा में भी कई गाने गा चुके हैं. अपने करियर की बुलंदियों को छूने पर इन्होंने फिल्मों में सिंगिंग से संन्यास ले लिया है.

0: अरिजीत का जन्म 25 अप्रैल 1987 को बंगाल के मुर्शिदाबाद के जियागंज में हुआ था। उनके पिता का नाम कक्कर सिंह है और उनकी माँ का नाम अदिति सिंह था। अरिजीत ने अपनी सिंगिंग की शिक्षा लेना काफी छोटी उम्र से ही शुरू कर दिया था। अरिजीत सिंह की शुरुआती शिक्षा जियागंज मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल भारत में हुई। उन्होंने राजा विजय सिंह हाई स्कूल मुर्शिदाबाद से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई श्रीपंत सिंह स्कूल जियागंज से पूरी की। अरिजीत ने म्यूजिक की तालीम पंडित राजेंद्र प्रसाद हजारी से ली और तबला बजाना सीखा। 9 साल की उम्र में सरकारी स्कॉलरशिप पे उन्होंने क्लासिकल संगीत पे महारत हासिल की। अरिजीत ने बड़े गुलाम अली साहब, उस्ताद राशिद खान, जाकिर हुसैन, आनंद चैटर्जी, किशोर कुमार, मन्ना डे और हेमंत कुमार जैसे दिग्गजों को सुना और सीखा।
1: तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम।
0: अरिजीत ने अपने करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में रियलिटी शो फेम गुरुकुल से की। उनको टिप्स कंपनी के कुमार तौरानी ने एक एल्बम के लिए बुलाया, हालांकि ये एल्बम भी रिलीज नहीं हुई। अरिजीत सिंह के संघर्ष का दौर जारी रहा। इसके बाद साल 2006 में अरिजीत सिंह मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई शिफ्ट होने के बाद मानो उनकी किस्मत पलट गई। शंकर एहसान लॉय ने अरिजीत को पहला ब्रेक अपने म्यूजिक एल्बम हाई स्कूल म्यूजिकल एल्बम 2 में दिया, जिसमें अरिजीत ने ऑल फॉर वन गाना गाया। उन्हें धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ। इसके बाद प्रीतम ने उन्हें 3 फिल्मों गोलमाल 3, क्रूक और एक्शन रिप्ले में काम करने का मौका दिया। साल 2011 में अरिजीत का पहला बॉलीवुड डेब्यू हुआ। उन्होंने मर्डर 2 के लिए मिथुन की रचना में फिर मोहब्बत करने गाना गाया, जो बहुत हिट हुआ और जिससे उनको बड़ी सफलता मिली। इस गाने को अरिजीत ने साल 2009 में रिकॉर्ड किया था, लेकिन इसे 2011 में रिलीज किया गया।
1: संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू।
0: इसके बाद उन्होंने साल 2012 में आई फिल्म एजेंट विनोद के गाने राबता को गाया। साल 2013 में आई फिल्म आशिकी 2, जहां गाना आया तुम ही हो। ये वो गाना था जो उस साल का लव एंथम बन गया। हर एक जगह सिर्फ एक ही नाम था और वो था अरिजीत सिंह। इस गाने ने अरिजीत को उनका पहला बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड जिताया। इसके बाद अरिजीत सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कबीरा, सुनो ना संगमरमर, मस्त मस्त, हमदर्द जैसे कई सुपरहिट गानों से अपने लाखों करोड़ों फैंस के दिल पर अमिट छाप छोड़ दी। अरिजीत सिंह अपनी पहली वाइफ रूपरेखा बैनर्जी से गुरुकुल के सेट पर मिले थे। यहीं से दोनों की प्यार की शुरुआत भी हुई। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2013 में शादी कर ली थी। पहली पत्नी के साथ उनकी मैरिड लाइफ ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। दोनों ने जिस साल शादी की उसी साल तलाक लेने का भी फैसला कर लिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से 2014 में बंगाली तरीके से तारापीठ मंदिर में शादी की थी। अरिजीत सिंह की तरह कोयल रॉय की भी दूसरी शादी है। करण जौहर की एक फिल्म ये जवानी है दीवानी का गाना बलम पिचकारी के लिए अरिजीत को म्यूजिक प्रोड्यूसर भी बनाया गया था। इस साल उन्होंने दूसरे फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो, आर राजकुमार, चेन्नई एक्सप्रेस, बॉस, जैकपॉट, गोलियों की रासलीला, रामलीला और मिकी वायरस जैसी और कई फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। एक समय था जब छोटा बड़ा डायरेक्टर अपनी फिल्मों में अरिजीत का एक ना एक गाना गवाना चाहता था। साल 2014 की शुरुआत में ही अरिजीत ने साजिद वाजिद और एआर रहमान जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया था। इसके बाद उन्होंने शारिब तोशी, अमित त्रिवेदी, विशाल भारद्वाज, सचिन जिगर, पलाश मुच्छल और टोनी कक्कड़ जैसे बड़े निर्देशकों के साथ भी काम किया।
1: जो मिलके रात जागते थे नैना,
0: साल 2016 में अरिजीत और सलमान खान के बीच कुछ अनबन होने की खबर मीडिया में आई थी। कहा जाता है कि एक अवार्ड फंक्शन में अरिजीत ने सलमान को कुछ गलत कह दिया था, जिसके कारण सलमान उनसे नाराज हो गए थे कि उन्होंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। अरिजीत ने सलमान की फिल्म सुल्तान के लिए एक गाना भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन सलमान ने उस गाने को अपनी फिल्म से हटा दिया था।
1: तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे कि यारे जो भी तूने कैसे किया।
0: अरिजीत सिंह की आवाज के दीवाने हैं लोग, और वो अब तक अलग अलग अवार्ड शो में 70 बार नॉमिनेट हो चुके हैं, जिसमें से उन्होंने अब तक 23 अवार्ड जीते हैं। वर्ष 2014 में नेशनल इंडियन स्टूडेंट यूनियन यूके ने इनको यूथ आइकन म्यूजिक अवार्ड 2014 दिया था। उसके बाद वर्ष 2018 में उन्हें रोके ना रुके नैना गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। अरिजीत सिंह की आवाज ने सालों साल हमारा खूब मनोरंजन किया है। अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है। इस बात का मतलब ये है कि वो अब फिल्मों में गाना नहीं गाएंगे। हालांकि राहत की बात ये है कि वो फिलहाल कॉन्सर्ट्स और एल्बम्स में गाना गाते रहेंगे, लेकिन इस खबर के आने के बाद अब फैंस काफी निराश हो गए हैं, क्योंकि आज के दौर में अरिजीत की ही आवाज है जो हर दूसरे गाने का हिस्सा होती है। SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम फिल्मी डायरी में आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।
2: और दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है आखिरी अंतराल का, जिसके बाद मैं आपके लिए बजाऊंगी आज के याद शब्द के गीतों की जो मेडले आपने मेरे लिए तैयार करी है। भाई, हम आज खेल रहे थे वो अंताक्षरी, जहां पर याद शब्द से आप मुझे गीत बता रहे थे। 04397997667 हमारा नंबर है। कोई गीत अब भी शामिल करना चाहते हैं तो बताइएगा, वरना ब्रेक के बाद मैं आपके लिए चलाऊंगी नॉनस्टॉप गीतों की रेलगाड़ी आज याद शब्द से। बने रहिए SBS हिंदी पर। विशाली बस यूं गई और यूं आई आखिरी अंतराल है, जिसके बाद रहेंगे आपकी पसंद के गीत SBS हिंदी पर।
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: Oh, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: Your program will resume shortly.
11: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है। जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें। अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
2: ब्रेक के बाद अब मैं फटाफट आपके लिए लेकर के आ रही हूँ याद शब्द से आज जो गीतों की रेलगाड़ी हमने तैयार की है। मेरे पास दो संदेश आए हैं। याद तेरी आती है मेरे को गाने का नाम भेजा गया है, लेकिन ये कौन सी फिल्म से है क्योंकि ये गाना बहुत जेनेरिक हो जाएगा, मैं नहीं समझ पाऊँगी कि आप कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं। अगर आप मुझे इसके बारे में कुछ भी और इन्फॉर्मेशन भेज पाए बंधु तो मेरे लिए थोड़ी सहायता हो जाएगी। इसके अलावा मिंकू चोपड़ा जी ने संदेश भेजा है कि यादों की बारा टाइटल ट्रैक, मैं इसी से शुरू करती हूँ क्योंकि एक्चुअली आज बहुत सारे लोगों ने मुझे इसी गीत की फरमाइश की है, अंताक्षरी में उन्होंने यही गीत मेंशन किया है, तो यहाँ से शुरू करते हैं और इसके बाद जैसे जैसे आपके संदेश रहे हैं वैसे वैसे गीत लेकर के आती रहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं।

आपके लिए है, हेमंत कुमार की आवाज़ में, और मुझे बहुत पसंद है। तो इस गीत के साथ वैशाली आज के लिए आपसे अलविदा कह रही है, फिर होगी मुलाकात। लेकिन आपको क्या करना है आपको पता है ना, आपको अपना बेहद ध्यान रखना, क्योंकि उसमें आप कोताही नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है आपको। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा।

Get a

0: जो पांव के ऊपर पांव को रखे और बैठे,
1: वो चट्टान जिस पे वो बैठे सिंहासन।

Papo, papo, papo, papo, papo.

नेचुरल

0: हुण तेरा मैनू मोह नहीं आउंदा, तैनू भी पता क्यों नहीं आउंदा। पागल कमली चली रहण दे, बस हुण मैनू कल्ली रहण दे, बस हुण मैनू कल्ली रहण दे।
1: Your news from here
2: and hits from home.
1: SBS South Asian.

हैं, प्यार कम ज्यादा झगड़ा करे हैं, ऐसे तड़पाए क्यों, ईगो तो दिखाए क्यों, मछले है जैसे कुनकन की मछली, स्टाइल झूठ

0: क्या खुद को खुदा मानते हो? क्या खुद को खुदा मानते हो? हमें मार तो दिया, पर एक शायर को मारने की सजा जानते हो?
1: Miss the name of a song? Find out anytime on the SBS audio app or website.

जाए।

SCJ.

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे, प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

कोरी है। SBS साउथ एशियन।